0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई बढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी सच।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: भव सागर से उतर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरु जी, ठीक है।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

जाए मन कोय। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भाव।

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

नाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कछ पका।

0: कमी है।
1: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
2: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
1: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
2: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: Sunshine, skyscrapers and souks.
7: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
6: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
6: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
7: Southall Travel. At all protected.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: 0730 009 8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730 009 8823।
10: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
11: आज नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता, करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं। उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
12: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: This is Leica Gold.
1: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Karamsad Samaj UK on Saturday 17th October at Nakshatra Hall, Snaky Lane, Feltham, TW137NA. Come along and enjoy the festive spirit with us.
2: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati for the meals that become memories. Loved by generations since 1970.
3: बात क्या है बंटू?
4: अरे बोलो काक भसुंडी।
2: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
3: अरे मुनी क्या हुआ? क्या हो गया?
2: और लाइफ बन गई हेवन।
5: भाभी डायन है।
2: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
6: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
2: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
6: आप सिर्फ मजे लो।

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, नाउ अवेलेबल ऑन द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा टिल्डा बासमती, ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर वन मील एट अ टाइम, लव्ड बाय जनरेशन सिंस 1970।
2: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
4: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
5: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
6: Okay, yeah, love you too.
7: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
8: कलाई पर हीरे, चेहरे पर मुस्कान, डायमंड टेनिस ब्रेसलेट £2,500 से शुरू। मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड, कॉल 0208767-7627. मीनार ज्वेलर्स, द डायमंड स्पेशलिस्ट्स।
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए, लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
12: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल,
11: टेस्टी of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: लाइका रेडियो नेटवर्क पर यह है लाइका गोल्ड रेडियो के प्रसारण। बृहस्पतिवार 2026 के अक्टूबर महीने की 15 तारीख और बहन भाइयों बहुत सारी बातें जुड़ी हैं आज के दिन के साथ में। गुरुवार 15 अक्टूबर 2026 पर वैसे तो आज के दिन के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमन यानी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, गांव में रहने वाली सीधी साधी महिलाओं के कंट्रीब्यूशन, उनके अधिकारों, उनके राइट्स, उनकी आर्थिक सशक्तिकरण को एम्पावरमेंट ऑफ देयर स्टेटस, भाई उनको सम्मान देने का दिन है आज। एक और चीज, आज वैश्विक हाथ धुलाई दिवस भी है। ये क्या होता आप सब सोच में पड़ जाएंगे भाई, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, एक जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया में कि साबुन से हाथ धोने की आदत डालिए, हाथ धुले हुए हों, स्वच्छ हों, बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वच्छता के महत्व के प्रति अवेकनिंग, जागरूकता फैलाने का दिन आज है। और भाई आज शरदीय नवरात्रों का 5वां दिन भी है, 5वां नवरात्रा। तैयार हैं आप? शुरुआत तो भाई हम प्रार्थना से करेंगे, आप सबके घरों में सुख शांति का भंडार भरा रहे, खुशहाली रहे, हर रोज दिवाली रहे।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Happy Navratri from Leica Radio Network.
0: Happy Navratri. शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5वां नवरात्रा, माँ स्कंद माता की पूजा का दिन। आज ललिता पंचमी का व्रत भी है। विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी नक्षत्र ज्येष्ठा, माता शेरों वाली भर दे झोली खाली।

0: जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद काली सी सड़क पे एक चोर निकलता है। ये भाई साहब आप गाने सुनवा रहे हैं कि लोगों को डरा रहे हैं, चक्कर क्या है भाई? बात ये, आज तो बृहस्पतिवार का दिन है, आज डरा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, कुछ दर्द भरे गीतों को प्रोग्राम में सजा भी सकते हैं। ये भी तो जिंदगी के हिस्से हैं, हमारे आपके सबके किस्से हैं, राइट? बृहस्पतिवार है और हमारे कुछ एक श्रोताओं को दर्द भरे गीतों का इंतजार है। तो साहब स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। माय नेम इज रवि शर्मा एंड दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। राइट, सबसे पहले आपको आज के पाउंड के रेट का भारतीय करेंसी में जानकारी देते हैं, बताते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चिंतन होगा 11 बजे की खबरों के बाद, 10:30 बजे आज के प्रमुख समाचार भी सुनवाए जाएंगे। दोपहर बाद 1 बजे तक आपको कई रंगों के गीत परोसे जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से कुछ दर्द भरे गीत होंगे, लेकिन सब कॉमेडी, पैरोडी और रोमांटिक हर तरह के गीत शामिल रहते हैं लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज का रेट भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 125.45 रुपीस मैक्सिमम। आज का ये नोट कर लीजिए रेट, 125.45 एक पाउंड के बदले। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, hi mum.
3: Nan.
2: Hello. Hello. Uncle Jeremy. Wow, hello. Oh my goodness, Auntie May. Wow, I'm going to run out of screen space here. Hang on, everyone.
4: At Tesco Mobile, we know friends and family come first. So make sure you never miss a moment with the iPhone Duo and its largest iPhone display ever in a thin, foldable design.
2: There. Now I can fit all of you in.
5: Ready, everyone? Happy birthday to you. Happy birthday.
4: Tesco Mobile, your second most important network.
1: Men's Mental Health Week starts this November.
6: Witness the beauty of Jordan, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
7: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
9: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 0192322274। बुक योर टेबल टुडे।
11: Tune in to Navratri Hours on Laika Gold at 9 AM and Laika Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
12: Have you noticed the way fans shout at football matches?
13: Oh, wake up!
12: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
2: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए। आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक। खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com।
3: सेलिब्रेट विद हल्दीराम्स।
4: पंजाबी छोले, राजमा रसीला, यमी दाल मखनी, आलू मटर, सरसों दा साग एंड मोर।
3: फेस्टिव फेवरेट्स रेडी टू ईट। शॉप एट हल्दीराम UK.com और एट योर नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर।
5: हल्दीराम्स।
6: Light up your Diwali. Buy one, get one free on all fireworks with a huge selection to choose from. Shop diyas, candles, mustard oil and all your Diwali decorations. So many offers. You'll have to come and see for yourself. Sira Cash and Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes.
7: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता, करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं। उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
8: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
9: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
10: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
11: बच्चों से प्यार करो, बड़ों का सत्कार करो, भाई ऐसे ऐसे संदेश सुनने को मिलते हैं। अब बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, या फिर बड़ों के लिए कहते हैं कि अगर हम बड़े बूढ़े नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, रास्ता कौन बताएगा, अनुभव कौन साझा करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना बच्चे हैं ना बड़े हैं, उनके लिए क्या संदेश है?

0: हमारे पास है वक्त आपके लिए, सबके लिए। जो लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत व्यस्त हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त हैं। समय को उन्होंने संयम से खर्च नहीं किया है। समय तो खर्च हो रहा है, होता ही रहता है, आप रोक नहीं सकते। लीजिए साहब, समय हो गया है अब समाचारों का। एक नाम
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और राय का गोल्ड पर खबरों का वक्त है। तो भाई

0: एक नाम बड़ा चर्चा में है आजकल और भाई उससे जुड़ी है बहुत सारी खबरें, आप सुन रहे हैं रसल ब्रांड। अब रसल ब्रांड जो है पहुंच रहे हैं अब सेकंड डे ऑफ रेप ट्रायल, उन पर जो चल रहा है भाई, वो अपने पर लगाए गए आरोपों को अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको जांच रहे हैं। इसके अलावा साहब सरप्राइज जीडीपी ग्रोथ एज यूके इकॉनमी स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट, भाई पहले से बिफोर जो है उससे ऐसा है कि मजबूत हुई है इकॉनमी यहाँ की। एंड एक शिकायत आ रही है कि भाई जो असाइलम सीकर्स को आप जिन इलाकों में बसा रहे हैं ना, वो पुअरेस्ट इलाके हैं, जो समृद्ध हैं लोग जहाँ की भाई इलाकों में स्थिति अच्छी है वहाँ उन्हें बसाइए ना, आप पुअरेस्ट इलाकों में और अधिक बोझ डाल रहे हैं। और ये तो लोकल खबरें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट से आने वाले समाचार क्या हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खास खास खबरें सुनिए। पाकिस्तान में पेशावर में एक स्कूल की छत गिरने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। एक्टर इमरान खान को मिला भारत छोड़ने का नोटिस, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में हुए थे शामिल। अंकिता भंडारी केस, इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे मुजाहिरा कर रहे माता पिता हिरासत में ली जाने के बाद रिहा। और दिल्ली में जो भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने उस पर टिप्पणी की, भारत कहता है हमारा अंदरूनी मामला, खामोश रहिए। अभी अभी एक खबर आ रही है, एसीपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न यानी भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली एक महिला पत्रकार को गिरफ्तारी से राहत दी है। दरअसल एसीपी ने उस महिला जर्नलिस्ट के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। लाइव लॉ के अनुसार भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इन प्रोटेस्ट को कवर करने वाली महिला पत्रकारों के खिलाफ यौन हिंसा के इल्जामों की जांच की मांग करने वाले जो जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है उनकी याचिकाओं पर ये आदेश जारी किया है। राहुल गांधी की एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। SIR के दौरान बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम हटाए जाने और कथित जो इररेगुलरिटीज हैं उनको चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति धर्म परिवर्तन से पहले की सामाजिक स्थिति के आधार पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ पाने का हकदार नहीं है। समझ रहे हैं आप भाई, इस्लाम में अगर सब बराबर हैं, उसमें कोई ऊंच नीच जात पात नहीं है जो कि क्लेम किया जाता है, तो फिर जो पिछड़ा वर्ग या उसकी जाति के आधार पर जो बेनिफिट्स वो ले रहा है हिंदुओं में रहते, अब उनको चुनौती दी जा रही है। बार एंड बेंच के अनुसार अदालत ने गुरुवार को आज कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर किसी गैर धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति अपने पहले धर्म में सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर जो रिजर्वेशन का लाभ पाता था, अब उसे पाने का दावा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पेशावर में एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से 18 बच्चों और एक महिला टीचर समेत 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 दूसरे बच्चे जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद 18 बच्चों को डेड पाया गया, जबकि वहीं एक महिला टीचर का शव भी अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रॉमा सेंटर में वहां मौजूद हैं कई बच्चे और जख्मियों को तत्काल जो है चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है। इमरान खान, भाई पाकिस्तान वाले नहीं, भारत में फिल्मी दुनिया के इमरान खान के बारे में खबर है। आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने नोटिस जारी करके 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। इमरान खान पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होकर फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है। ये मामला 10 अक्टूबर को सामने आया जबकि इमरान खान अगस्त क्रांति मैदान में प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। अमेरिका के इलिनॉय राज्य के पैलेटाइन में मास शूटिंग के धमकी के मामले में पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आशंका जताई गई कि ये जो है इस हमले का संभावित निशाना एक हिंदू मंदिर हो सकता था, टारगेट एक हिंदू टेंपल था। इस मामले में आज शिकागो स्थित भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने भी बयान जारी किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ अमेरिका में कर रहे हैं भारत में वही करने की कोशिश की जा रही है। SIR पर एक अमेरिकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यह बयान आया है। भारतीय मूल की है वो अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल, इन्होंने स्पेशल एंड रिवीजन प्रक्रिया यानी प्रोसेस से वोटर लिस्ट के करीब 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने पर चिंता जाहिर की है। डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल ने भारत में बड़े पैमाने पर वोट काटने के कदमों को डेमोक्रेसी के खिलाफ बताया है, लोकतंत्र विरोधी कोशिश बताया है। कल वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में 4th T20 मुकाबला खेला गया। इसमें वेस्ट इंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की T20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है और सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला परसों यानी 17 अक्टूबर को बेंगलोर में खेला जाएगा। निर्णायक मैच होगा ये। दिल्ली के प्रदर्शन के बारे में एक खबर और आ रही है, यूनाइटेड नेशंस की टिप्पणी कि भारत में ये जो कुछ हो रहा है गलत है। तो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने पर यूनाइटेड नेशंस की मानवाधिकार हाई कमीशन कार्यालय की चिंता को नाकाबिले मंजूर बताया है, अविष्कार्य बताया। जायसवाल ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में यह दखलंदाजी है। जायसवाल ने कहा कि हम अपनी प्रेस रिलीज में साफ कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की ओर से जताई गई चिंताएं बेवजह हैं, साथ ही इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप यानी दखलंदाजी जैसा है। वाले ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जिंदगी वहाँ सैटकल माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
1: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी।
2: बीकानेर वाला।
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay, yeah, love you too.
7: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
8: Simple, stunning, so you. Discover beautiful chains from just £225. Meenah Jewellers, 181 Upper Tooting Road. Call 020 8767 7627.
9: Meenah Jewellers.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
11: The Ravi Sharma Show on Like a Gold.
12: और बहन भाइयों, अब एक दर्द भरा गीत क्या कह रहा है? कहते कि कोविड में हमारे कलेजे का टुकड़ा थी वो, बहुत प्यारा सुंदर मुखड़ा थी वो, और लोरी गा के हम उसको सुलाते थे, मुस्कुरा के सुबह फिर जगाते थे। अब वो जब हमेशा के लिए सो गई, अब उसका सोना और हमारा रोना, कोशिश करते हैं जगाने की, नहीं उठती है बिटिया।
13: जगी जा तारा,
12: पापा की पूरी दुनिया थी वो, उनके परिवार की छोटी सी मुनिया थी वो।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं। लाइका रेडियो मिडलैंड भी जुड़ा है आपके साथ। अगर आप इस समय ये आवाज सुन पा रहे हैं तो याद दिला दूं कि मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में हम आपका स्वागत चिंतन के साथ करते हैं। चिंतन, आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं इल्फोर्ड से पवन शर्मा का भेजा आलेख। कहते हैं, आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं अपने परम मित्र रविंद्र खजूरिया साहब और उनके परिवार को। कहते हैं, आजकल नवरात्रों में बहुत धूम मची है, माँ शक्ति भगवती की आराधना करके हम लोग शक्ति जुटा रहे हैं, साहस जुटा रहे हैं। लेकिन साथ ही आज के चिंतन के लिए पवन कहते हैं कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर को भारत के यशस्वी प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट स्वर्गीय जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती पड़ती है। 1931 में रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था और साहब एक साधारण परिवार से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सर्वोच्च पद तक पहुंचना उनकी उपलब्धि थी, पर उनका जीवन एक आदर्श जीवन था। वैसे भाई, जन्मदिन मनाने वालों में तो और भी कई नाम शामिल हैं। पवन कहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम नेता हैं, प्रयागराज में जन्मे थे। आज ही के दिन 1957 में रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, 1952 में जन्मे थे। और भी भाई कई लोगों के जन्मदिन आज हैं, कईयों की विवाह की वर्षगांठ है, उनको हम शुभकामनाएं देंगे। लेकिन पहले बात करें जनाब APJ अब्दुल कलाम की। उनकी कुछ बातें याद आती हैं, वो कहा करते थे और बड़ी मशहूर है ये उनका कलम बयान, ये उनकी बात कि सपने वो नहीं हैं जो हम सो कर देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मतलब इतनी ऊंची सोच और इतना पक्का इरादा कि हम उन्हें हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाएं। APJ अब्दुल कलाम साहब की बहुत सारी बातें भाई चिंतन के योग्य हैं, लेकिन एक प्रसंग जो है पवन भाई ने भेजा है। कहते हैं कि कुछ लोग सफर पर निकले, रास्ते में भूख लगी तो सबने सोचा भाई रोटी हम ले चलते हैं, सब्जी तो कोई ना कोई लाएगा, खा लेंगे। पर सबके पास रोटियां ही थी, सब्जी किसी के पास भी नहीं थी। सब यही सोच कर रहा है कि कोई और ले आएगा। अपनी अपनी रोटियां खोली, खाएं कैसे, सब्जी किसी के पास नहीं है। तो एक ने कहा भाई मेरे पास थोड़ा सा नमक है एक पुड़िया में, बोला चलो इससे खाएंगे। कहते नहीं है, नहीं मैंने मान लिया है, सोच लिया है। कहते नमक नहीं, हाँ भाई रोटी है सबके पास, मैंने सोच लिया कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है, रोटी पर रखा और वो रोटी का टुकड़ा तोड़ता और भाई वो नकली नमक से, सोच के नमक से, उस क्या कहें भाई कल्पना से, तस्वर से उस नमक के साथ रोटी लगाता और निवाला खा लेता और फिर कहता वाह क्या नमकीन रोटी है साहब। दूसरों ने भी ऐसा करना शुरू किया पर एक ने खाना शुरू नहीं किया। बाकी वे रोटी का टुकड़ा तोड़े और रोटी पर ही जरा सा रगड़े, भाई नमक लगाया, नमक है नहीं लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना में मान लिया। जो दोस्त रोटी नहीं खा रहा था वो बोला भाई अच्छी है तुम्हारी कल्पना, तो फिर अच्छी है तो तुम क्यों नहीं खाते खाना, भाई नमक लगाओ, मान लो तुम्हारी रोटी पर नमक रखा है। बोले भाई जब मानना ही है तो मैं नमक क्यों मानूं, मैं तो मटर पनीर मानूंगा। रोटी पर तो ना नमक है ना मटर पनीर, पर जब कल्पना ही करनी है, जब खाली सोचना ही है तो सपने भी ऊंचे देखेंगे साहब, और ऐसे सपने जो हमें सोने नहीं देंगे। स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाती थी,
एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे। मान के चलो भाई, वो मान लो किसी के पास 5 रुपए हैं, उसने 2 खर्च किए, इस तरह से सवाल समझाते थे। लेकिन एक कल्पना ये, मान लो संघर्ष सामने है, एक उम्र सामने है, साधन नहीं है, पर फिर भी एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे। मान लो, मान लिया, और बच्चे हाथ उठा करके घोष करते थे, ऐलान करते थे, यस टीचर, एक दिन हम बहुत बड़े बनेंगे। देश के प्यारे, सबके सहारे टीचर दीदी हम बन के दिखाएंगे। और बहनों भाइयों, यकीन मानिए उनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत आगे तक गए होंगे। इरादा ऊंचा रखिए और उसको प्राप्त करने के लिए अपना सुख चैन आराम सब कुछ उसके पीछे लगा दीजिए। भाई देखिए, अगर सोचना ही है, सपना देखना ही है, कल्पना करनी ही है, तो ऊंची कीजिए। संदेश ये है आज के चिंतन का।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें इस लंदन सेल्फोर्ड से पवन शर्मा ने भिजवाया। और पवन भाई कहते हैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं नवरात्रों की, और कल के आयोजन की कहते हैं हमने बड़ी मस्ती के साथ माँ भगवती का गुणगान किया। रविंद्र खजूरिया जी थे यजमान, और उनका परिवार भाई साहब मिलकर के बहुत सारे कहते हैं हमारे मित्र रिश्तेदार आए, आपने नाम लिख के भेजे हैं पवन उनके, क्या आप की ओर से उनको धन्यवाद रेडियो के माध्यम से पहुँचे। डॉक्टर निरंजन पटेल और उनका परिवार पिनर से, डॉक्टर शंकर, डॉक्टर बिश्नोई, डॉक्टर राज गुप्ता और उनका परिवार साउथ एंड से, डॉक्टर आकाश प्राशर फ्रॉम एमर्सन पार्क और डॉक्टर सुरेश, इन सबको भाई पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर गौरी शंकर वो भी तो पहुँचे भाई, सभी डॉक्टरों का बहुत बहुत आभार करते कल के आयोजन में पधारने के लिए, और विशेष धन्यवाद आशु बिटिया को। और भाई अनिल मृदंग वादक, क्या बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कल के आनंद की, जो बटा लुटाया गया आनंद दुर्गा मंदिर एल्फर्ड में। मेरा भाइयों चिंतन को समेटते हुए याद दिला दूं कि हर रोज मंडे टू फ्राइडे चिंतन जो है 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज जो गीत आपने सुना आशा भोसले और सखियों की आवाज में, भाई बच्चों की आवाज में, देश का प्यारा, सबका दुलारा, सबका सहारा कौन बनेगा, हम दीदी, इरादा पक्का है, ऊंची सोच रखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से हमें यह संदेश मिलता है, बड़ी साधारण परिस्थितियों में वो पैदा हुए, संघर्ष करके सब सर्वोच्च पद तक पहुंचे, आज भी हर हिंदुस्तानी के मन में उनके प्रति सम्मान है, द टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम श्रद्धा से याद करते हैं। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज का रेट बता रहे हैं, और भाई आपको याद दिला रहे हैं कि पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो सही अवसर है। टुडेज रेट इज 125.45 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया SBI ब्रांच, कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK की ब्रांच में जाकर के आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वाया ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, और यू कैन यूज योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
3: Tune in to Navratri Hours on Like a Gold at 9 a.m. and Like a Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed. Sadco.

0: नाम बदल जाते हैं, शीशे में तस्वीर भी बदल जाती है। कैसे लोग हर रोज नए रंग में ढल जाते हैं, सोचिए।
1: लाइका गोल्ड, फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit Dairy Valley.

0: शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज गीत। भैया शर्मिला जी तो हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, एक और गीत भी उनकी फिल्म से आएगा, लेकिन आज बृहस्पतिवार के लिए बड़ा सूटेबल था ये गीत। और भी हमारे श्रोता सुझाते हैं और वो बताते हैं कि दर्द बड़े
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a Gold.
1: Like a Extra podcast update.
0: Hamara naya episode uplabdh hai. लाइका में, लाइका मैन अनफिल्टर्ड। तो भाई फिर जब मैन की बात करनी है तो जिक्र महिलाओं का भी हुआ। कहते हैं कि आर विमन बेटर रेडियो प्रेजेंटर्स। भाई डरते कह रहे हैं, बिल्कुल हैं, डेफिनेटली हैं, मानना पड़ेगा हैं, लेकिन सही रूप जानने के लिए देखिएगा। ये आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पर ये पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 37, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं राज बद्दन साहब और दीप राजा, विश भटनागर और सैंडी शाही से होस्ट कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे ये एपिसोड जो हैं ये उपलब्ध हैं बहुत सारे चैनल्स पर, स्पॉटिफाई, यूट्यूब और कई जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स जहां पर ये देखे जा सकते हैं। ज़रूर देखिएगा
1: आप। एक्स्ट्रा Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: People across the country are feeling all warm and fuzzy about their heat pumps.
6: Installing it during the renovation was an easy call. The bathroom tiles, however.
7: It's much nicer than your boiler. The place is just always warm and cosy-like.
8: The government grant was the help we needed to start upgrading.
7: You get a lovely steady temperature. Walking around without my slippers, are you?
5: Feel all warm and fuzzy inside with a £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/cleanenergy.
9: Eligibility criteria apply. See website for details.
3: ये है लाइका गोल्ड।
10: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
11: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
10: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
11: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
10: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
11: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
10: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
11: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
12: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
13: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with Karamsad Samaj UK on Saturday 17th October at Nakshatra Hall, Snaky Lane, Feltham, TW137NA. Come along and enjoy the festive spirit with us.
14: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati for the meals that become memories. Loved by generations since 1970.
15: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
16: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
17: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
16: ये तो बताओ, कोई पता चला?
17: गुरु गुरु,
18: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
17: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
18: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
16: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
19: शीघ्र शीघ्र।
18: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
3: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
19: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
20: Travel Hub, your safari specialist to Masai Mara, Serengeti and Cape Town with Kruger National Park. Call Travel Hub.
21: Humse sasta kahi nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833.
20: Travel Hub, best service with unbeatable price.
21: At all protected.
20: Visit travelhubworld.com.
22: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
23: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
24: When you lose someone dear, a little support can mean so much. Om Funeral Care provides compassionate guidance, respecting your family's customs and traditions. On Kenton Road, West London, and in Ilford, East London, our priests conduct funeral rites in Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, English, and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208-922-3344. Available 24 hours a day.
25: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
26: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
27: Okay. Yeah, love you too.
28: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
29: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
30: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno LeicaGold.com pe.
31: This is Leica.

0: आरती मुखर्जी की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत, गुलजार की शायरी और भाई ये गीत अभी आपने सुना, नैना शाह का सुझाया हुआ। नैना जी थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: ये मैं बताता हूँ आपको रेट्स जो वो दे रहे हैं LemFi वाले। एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में 125.91 रुपीस। अफगान अफगानी 86.02, बांग्लादेशी टके 163.37, श्रीलंकन रुपए दे रहे हैं 438.45, पाकिस्तानी रुपए 367.09, तो ये तो सुना भाई। केनियन शिलिंग्स 172.01 और मॉरिशन रुपीस 62.68।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is sold at the rate of 100.78 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Diwali Dhamaka Rates, brought to you by Remitly. Send money back home to India at the rate of 125.70 Indian rupees, equivalent to £1 British sterling. Pay no fees when you send £500 or more to India. Download the Remitly app and start sending today.
4: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
5: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0, आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर, द विलोज फॉरेस्ट रोड, इलफर्ड, IG6 3SL।
4: रात 8 बजे से टिल लेट, डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
5: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
4: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: Mamster Panipuri or Panipuri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11, 11.
3: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
5: Danube 11, 11. Danube Properties.
6: Danube 11, 11. 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
7: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद.
8: बीकानेर वाला परंपरा भी.
7: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ. विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड. बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद.

0: Radio Network, broadcasting across Greater London.
1: धीरे धीरे समाचारों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन भाई हमें हिना जी याद दिला रही हैं कि आप ये मस्ती भरे गीत बीच में क्यों ला रहे हैं। हाँ, आज तो दर्द भरे गीतों का दिन है। अब इससे ज्यादा दर्द कहाँ से लेके आऊं भाई। वैसे एक बता,
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: कहाँ से लेके आऊं ये मत कहिए शर्मा जी, दर्द बिखरा पड़ा है। दुख बांटो छाटो इतना है कि आप कहेंगे कि साहब ये जिंदगी क्या है, गम का दरिया है। जिंदगी कटी पतंग है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, जिंदगी का ये भी एक रंग है।

बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी। और प्रीति बेल्जियम में सुन रही है, चिंतन की प्रशंसा लिख रही है। आप अमृता जी कहती है ख्वाब है, क्या है बताते हैं।

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store Light up your Diwali. Buy one, get one free on all fireworks with a huge selection to choose from. Shop diyas, candles, mustard oil and all your Diwali decorations. So many offers. You'll have to come and see for yourself. Sira Cash and Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes. Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
2: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
3: और बहनों भाइयों आप जानते हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह के कलाकार का नाम है भाई वो एक अदाकारा हैं एक अभिनेत्री हैं बड़ी सफल लेकिन भाई शाही परिवार से उन्होंने रिश्ता जोड़ा और नवाब ऑफ पटौदी और ये पटौदी बता दूँ आपको कि ये जगह हरियाणा में है तो भाई वो इस बहाने इस तरीके से हरियाणवी भी हैं उनके बेटे उनकी बेटी उनके परिवार के कई लोग जो है वो फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं लेकिन उनके पति देव वो भाई क्रिकेट के सुपरस्टार थे किसी ज़माने में और भारतीय टीम के कप्तान भी थे मुझे याद है एक बार मैच चल रहा था और हम कमेंट्री सुन रहे थे रेडियो पर तो मंसूर अली खान पटौदी जो उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे उन दिनों भाई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी और साहब जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो भाई कमेंटेटर बता रहा था कि ऑडियंस में यानी दर्शकों में शर्मिला टैगोर भी आई हुई हैं जो उनकी होने वाली पत्नी हैं भाई उनकी शादी होने वाली थी उन दिनों और साहब क्या बताएं पटौदी आए और बहुत जल्दी से 3 रन बना के आउट हो गए जैसे आए थे वैसे लौट गए लोग कहने लगे भैया इन्हें मैडम से मिलने की जल्दी है लेकिन साहब मैडम को कोई जल्दी नहीं थी मैडम चाहती थी कि वो क्रीज में टिकें पर क्रिकेट का आपको पता ही ऐसा ही होता है और आज दर्द भरे गीतों का दिन है हमारे श्रोता कह रही है हंसी ठाके नहीं चलेंगे किसी गीत को सुनवाइए जो जिसमें क्या हो टूटा हुआ प्यार हो लंबा इंतजार हो दिल बेकरार हो और आंखें बरसने को तैयार हो ठीक है साहब सुनवा देते हैं पिक्चराइज शर्मिला टैगोर पर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शर्मिला जी

0: जितेंद्र के साथ मुख्य भूमिका में थी शर्मिला टैगोर एंड दैट वाज द सॉन्ग भाई लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज में टेकन फ्रॉम द फिल्म मेरे हमसफर। शर्मिला टैगोर इस सप्ताह की कलाकार भाई आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं और कल भी एक और गीत सुनेंगे आप इस कार्यक्रम में। हालांकि कल मैं अनुपस्थित रहूंगा भाई, किसी कारण से मैं स्टूडियो में नहीं आ सकूंगा, लेकिन बहन भाइयों जो भी होंगे वो आपको शर्मिला जी पर एक गीत इस समय ज़रूर सुनवाएंगे। फिलहाल तो हम बताएंगे एक और गीत जिसमें भाई शिकायत है, और शिकायत किसके प्रति? पूरे समाज के प्रति। क्या है?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: कहते हैं भाई जहां जाते हैं कोई काम नहीं करता रिश्वत के बिना, कोई पेपर वर्क आगे नहीं बढ़ता, और ये जो भ्रष्टाचार है, करप्शन, उसके खिलाफ कोई गीत है आपके पास शर्मा जी? है भाई, जब भ्रष्टाचार है तो उस पर गीत भी होंगे, पर इस गीत को सुनेगा कौन? सुनेगा तो मानेगा कौन?
3: दुनिया में

0: Vibe brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: अभी हमने भाई किशोर कुमार साहब की पुण्यतिथि मनाई थी और उन्हें याद किया। बड़े गुणी कलाकार थे, मंच के भी, स्टूडियो के भी और भाई फिल्मी पर्दे के भी, फिल्मों में भी। लेकिन उनकी याद में एक शो हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त, क्रेजी फॉर किशोर, और ये दिवाली स्पेशल फीचरिंग द मोस्ट मेलोडियस ट्रैक्स ऑफ किशोर कुमार, अ ट्रिब्यूट नाइट विद 515 लाइव बैंड on Friday the 6th of November at the Prince Regent Hotel. Tickets at eventbrite.co.uk. Exclusive radio partner, you know, yes, Leica Gold Radio.
2: Ye hai Leica Gold. London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथ हॉल ट्रेवल का वो संदेश आपके नाम भाई, एक पैगाम कि साउथ हॉल ट्रेवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट 629 पाउंड्स पर पर्सन, 629 पाउंड पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स. ट्रेवल बाय 10th ऑफ दिसंबर. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: News from Greggs. As shops brace themselves for the festive bake's return next week, we can confirm it still contains no turkey. It does, however, now contain more chicken, pork in the sage and onion stuffing, ham hock, cranberries, and pastry that flakes all down your top. And that's the headlines.

0: 11 खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
4: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
5: अंदाज आपका चमक हमारी खूबसूरत चेन सिर्फ £225 से शुरू। मीनार ज्वेलर्स 181 अपर टूटिंग रोड कॉल 0208767-7627।
6: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah, love you too.
7: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
8: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 AM and Leica Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
9: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203-048-4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
12: Tasty track. इतना स्वाद क्यों है भाई? क्योंकि इसमें शामिल है जन्मदिन का केक. कौन मना रहे हैं आज अपना बर्थडे? हम आपको बता चुके हैं कि भारत में भाई एक केंद्रीय पूर्व मंत्री जो है मुख्तार अब्बास नकवी अपना बर्थडे मना रहे हैं. प्रयागराज में जन्मे थे आज के दिन. छगन भुजबल ये भी एक राजनेता हैं महाराष्ट्र के. 1947 में जन्मे थे नासिक में. और साहब हमें हमारी बहन फरीदा गुलाम अली बता रही हैं कि इट इज़ और इमाम शाह रहीम अल हुसैनीज 55th बर्थडे टुडे. ऑल इस्माइलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सेलिब्रेटिंग. सालगिरह मुबारक कहती है उनकी. सालगिरह के साथ साथ नवरात्रि भी मुबारक. थैंक यू फरीदा बहन.

भास्कर कहते हैं कि भाई वो आज आप अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। 1971 में रामेश्वरम में जन्मे थे वो 15 अक्टूबर को। कहते हैं उनके ऊपर एक किताब है अब्दुल कलाम साहब, उनके ऊपर उन्होंने लिखी है किताब अबाउट स्वामी नारायण प्रमुख स्वामी जी महाराज। भास्कर पटेल बता रहे हैं, मैंने देखी है। और ये पटेल साहब मैं आपको बता दूं, वो पुस्तक मेरे पास भी है, भेंट में मिली, उसके कवर पर छपे हैं दोनों महानुभाव प्रमुख स्वामी जी महाराज और उनके साथ एपीजे अब्दुल कलाम।

आई लव यू टू। प्रीति बेल्जियम में सुन रही हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चिंतन अच्छा लगा आपको। और देवेंग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। देवेंग हाउ ओल्ड आर यू? क्या कहा? और ये कह रहे माइंड योर बिजनेस, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स भाई, हैप्पी बर्थडे। आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो भाई धूमधाम से मनाइए, हमारे नाम का केक भी खाइए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू ऑल द बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स।

बात तो पति की कही है, वादा करो किसी से तो फिर वादा कभी ना तोड़ो। आगे तू तक तू तक तूतिया।

वियाना में अनिल सोनी साहब सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सोनी साहब। क्रोइडन में महेंद्र पटेल वत्सला जी हमेशा की तरह साथ हैं आप हमारे। महेंद्र बरजारिया जगदीश बुशी में।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: भाई चिंतन का जिक्र अभी तक हो रहा है, चिंतन में सपनों की बात हुई थी। जसू गरी रवि भाई गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में लिखा था उन्होंने, आफ्टरनून में पढ़ रहा हूँ मैं। रवि भाई आज का चिंतन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। राजीव पटेल साहब, सो नाइस ऑफ यू। रागनी वाजी उल्लास, ये टोरंटो में है, टोरंटो में सुनती हैं। और पम्मी सिंह स्लो में, और आप कौन है जी? अभी नाइस सॉन्ग, कौन सा गीत था अभी ये नहीं लिखा आपने, पर जो आपको पसंद आया है आप अपने नाम कर लीजिए और उसकी पेमेंट मेरे नाम कर दीजिए। थैंक यू। हंसा बोरा, गुरुदेव गांजा, और भाई ये हैं, हाँ फरीदाबाद जी, फरीदा गुलामली जी, रानी सलोवाली, भरत गंगाराम, हेटल सोलंकी, देशराज बैसन साहब, क्या कहने भाई आप, आप लिख रहे हैं कि ये जो इसका नोबेल शांति पुरस्कार है वो उनकी वकील नवी पिल्लई को क्यों मिला, इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला की वकील नवी पिल्लई को मिला, लेकिन ट्रंप का क्या हुआ? शांति दूत, समझौता कराने वाले गांव के सरपंच ताऊ, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। डोनाल्ड भाई निराश ना हो, हाँ और कुछ नहीं तो कोई ना कोई की लीडर किसी को आपके पे खुश होके यारी दोस्ती में दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद बैसन साहब। और शोभना राय, थैंक यू। राजकुमार साहब, रितेश जी भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खास धन्यवाद अमृता, आप कहती हैं आपने पत्रकारिता की तालीम ले रखी है, जर्नलिज्म पढ़ा है आपने, और एक सपना है मेरा क्या कि मैं बहुत बरसों से आपका कार्यक्रम सुनती रही हूँ, आपकी प्रशंसक हूँ, और एक बार आपके साथ कार्यक्रम करने का ख्वाब देखा है। एक बार क्यों भाई, बार बार रेडियो पे आप प्रोग्राम पेश करें ये मेरी तमन्ना है अमृता जी। मैं पता करूँगा संभावनाओं का, क्यों ना एक हफ्ते में एक प्रोग्राम किसी प्रेजेंटर के साथ, या आप रेगुलरली ज्वाइन करना चाहें तो भाई ट्रैवल करने के लिए लंबा सफ़र होगा आपके लिए, पर आप अगर करें तो मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आजकल छुट्टियाँ मारने का बहुत अभ्यास हो गया। तो पहले मेरे साथ करें फिर मेरी जगह करें, कार्यक्रम अच्छा लगेगा। तो बहनों भाइयों, ये अमृता जी का ख्वाब है, और ऐसा ही ख्वाब देखना कोई मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। थैंक यू भाई, ये प्रशंसकों के बहुत बहुत जो संदेश आए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं आपने मेरे बारे में जो कहा है ना, मैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत वही करता हूँ जो जो आपने कहा है।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: जब कोई शब्द ना मिले ना तो फिर ये कहते हैं कि अभी अभी आपने जो कहा ना मेरे बारे में वो मुझे वैसा ही लगा, मतलब जिस तरह से आपने वो कहा वो भी ठीक था, और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत वो करता हूँ। अब बाकी आप अपने आप शब्द भर लो। और साहब ये संदेश है रेट का, लम्फाई वालों का, अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहें तो इस समय जो रेट चल रहा है नोट कीजिए, फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 125.82 रुपीस, पाकिस्तानी 367.13, बांग्लादेशी टके 163.1, श्रीलंकन रुपए 438.83, और मॉरिशन रुपए 62.71, and Afghani 86.1.
3: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Aur sab sone ka bhav, the gold is sold at the rate of 100.69 pounds per gram.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: नवीन निश्चल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भाई अपने जमाने के बेहद हैंडसम नौजवान, इस फिल्म से उन्होंने भी रंग जमाया था। इस फिल्म में अभिनय का कमाल दिखाया था। आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म फॉर हिम।
1: जान मेरी पे बनी बनी चढ़ती जवानी तेरी कैसे संभाले तू।
0: सावन भादो।

0: उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला।
1: Laika Gold. Diwali Dhamaka Rates. Brought to you by Remitly. Send money back home to India at the rate of 125.70 Indian rupees, equivalent to £1 British sterling. Pay no fees when you send £500 or more to India. Download the Remitly app and start sending today. The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Lohana Community North London on Sunday 18th October at Dhamecha Lohana Centre, South Harrow, HA28AX. Join us as we come together to celebrate this special festival.
2: Sponsored by Star Tours. Scotland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिट 8, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
3: Find the best deal for flights on Air India, Emirates, British Airways, Virgin, BIA and Sri Lankan Airline only with TravelHubWorld.com.
4: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
5: This Diwali, celebrate with Shayona.
2: Enjoy Mathia and Chorafali. Mix and match any three for just £4.50.
5: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai available at Shayona stores.
2: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrisons, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
5: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swaad jit tehwar ne banave khas.

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
1: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
2: बीकानेर वाला।
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
4: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges just may apply.
5: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer. Share festive sweetness with Haldiram's.
6: Kaju Katli, Coconut Barfi, Gulab Jamun, Mysore Pak, Milk Cake, Rasgulla and more. A taste of home.
5: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
7: Haldiram's.
0: Send money back home to India with Remitly. Make Diwali shine brighter with Remitly. Quick, safe and affordable money transfers. No fees on transfers of £500 or more from UK to India when sending for bank deposit or UPI until 31st December 2026. Exchange rate applies. Download the Remitly app.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
9: DJ sahab, chalne ka samay ho gaya hai. याद दिला दूं आपको कि मेरे बाद बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेज़बान होंगे और भाई अब हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को 10 बजे की खबरों के बाद। एक और मनोरंजन लेकर शामिल हो जाऊंगा आपके साथ इस महफिल में और जाते हुए कहूंगा भाई ज़िंदगी बहुत छोटी है। वो जो कल गीत सुनवाया था हमने, आखिरी गीत कौन सा था कल, उसी पर आधारित आज का संदेश भी ये है कि कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज तुम उनको जाने ना दो। दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। पत्नी पति पर शक करे या पति पत्नी पर, पार्टनर्स अपने कारोबार में एक दूसरे पर शक करें, टीचर स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट टीचर, मतलब कहीं भी शक आएगा ना वहां दरार पैदा होगी। तो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज तुम उनको जाने ना दो। रोक लो।

आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन की डोर बड़ी कमजोर, ना जाने किस मोड़ पर टूट जाए।

तो लीजिए बहन भाइयों, चलता हूँ, कल मुझे मिस कीजिएगा, ओके? मंडे को मिलेंगे। हैव अ सुपर्ब वीकेंड एंड बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा।

0: वाह वाह वाह वाह, ऐसा म्यूजिक सुनाई देता है तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन इसके पीछे, हर एक गाने के पीछे कहानी होती है और गानों के पीछे लोग होते हैं जिनको लाइका गोल्ड कभी नहीं भूलता। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट आपकी खिदमत में। लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप। And it's 464th day on Laika Radio Midlands. And 4 baje aayenge Sandy Shah with, of course, Drive Time. And on Laika Radio Midlands, 4 se 7 baje tak honge Raj Patan. Today, in the 42nd week, it is 288th day of 2026. 77 days left this year and 33rd day of Laika Gold, great year number 6. That's right. Yeah, because Dil Se Radio was rebranded on 13th of September 2021. And Laika Greater Manchester, our beautiful station up there, is 904th day today. अभी कहानी यहां से शुरू होती है। कहां से शुरू करूं मैं? Okay, here we go. कहानी शुरू होती है दो दोस्तों की। दो दोस्त, एक का नाम था फकीरचंद और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज। फकीरचंद और पृथ्वीराज दोनों खालसा हाई स्कूल लियालपुर, वहां पे दोनों पढ़ते थे साथ में। और फिर दे हैड बीन फ्रेंड्स एंड लेख, कौन लेख? ओके, मैं बताता हूं। फकीरचंद के बेटे लेख और उनका भाई योगराज। अब योगराज जब बड़ा हुआ तभी फकीरचंद ने उनके दोस्त पृथ्वीराज कपूर से कहा, आप प्लीज मेरे बेटे को कुछ जॉब दे दीजिए। तो उन्होंने उनको असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी रखा। किसने? पृथ्वीराज कपूर ने। पृथ्वीराज कपूर ने हमारे फकीरचंद टंडन के बेटे योगराज को नौकरी दिलाई। और फिर दूसरा भाई, योगराज का छोटा भाई लेख टंडन, अभी डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद रवि टंडन हु इज द फादर ऑफ रवीना टंडन। इनका कोई रिश्ता नहीं है। रवीना टंडन के फादर रवि टंडन, एंड रवि टंडन हैज गॉट नथिंग टू डू विद लेख टंडन। लेख टंडन वॉज बोर्न ऑन 13th of February 1929 इन शेखुपुरा इन पंजाब, एंड ही पास्ड अवे ऑन 15th of October 2017 इन मुंबई। दैट मीन्स 9th डेथ एनिवर्सरी। एंड इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई टू हिज क्रेडिट। अगर मैं नाम बोलूँगा तो आप फिर समझ जाओगे कि कितना महत्व नाम है और कितना अच्छा काम किया है इन्होंने। ओके, मैं बोलूँ, आपने गाना सुना अगर तुम ना होते। अगर तुम ना होते इनको अवार्ड मिला था ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड इनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में, एंड दैट इज None other than Lake Tandon. So, तालियां उनको। And then, उन्होंने दूसरी जो फिल्में की, Professor. Woohoo! और ये फिल्म, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ये फिल्म थी ताराचंद बरजातिया। Of course, everybody knows ताराचंद बरजातिया. And Lake Tandon ने डायरेक्ट की थी और म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन ने। अब वापस आते हैं हम Lake Tandon के पास। And Lake Tandon started working on films like Jhuk Gaya Aasman, Rajendra Kumar and Saira Banu. And then he did his directorial on Ek Baar Kaho. And then Agar Tum Na Hote To Maine Aapko Zikr Kar Diya. Professor bhi aapko zikr kar diya. Lekin dusri film mein hai Prince. Woohoo! And ek thi film... अभी इस फिल्म में एक कहानी है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक आम्रपाली जो फिल्म बनी थी वो हमारे लेख टंडन की फिल्म आम्रपाली, उसमें ड्रामा बहुत हुआ था। एक गाना था जो शंकर जयकिशन जब भी गाना करते थे, बनाते थे, तो राज कपूर को पहले सुनाते थे, राज कपूर बुक कर लेते थे वो गाना अपनी म्यूजिक बैंक में, एंड देन दे आर नॉट अलाउड टू गिव द सॉन्ग टू एनीबडी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक गाना इन्होंने दे दिया लेख टंडन को और राज कपूर जी को पता चल गया, एंड ही केम टू द स्टूडियो एंड ही स्टॉप्ड दैट सॉन्ग एंड ही सेज मुझे ये गाना मेरी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए चाहिए, सो यू कैन नॉट टेक दिस सॉन्ग। और इमीजिएटली लता जी सैट विद शंकर जयकिशन एंड शैलेंद्र, एंड शैलेंद्र को कहा कि आप ये 3-5 अंतरे लिख कर लाओ और इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं गाना। और वही गाना जो था, जो विच वॉज मेंट फॉर मेरा नाम जोकर, उस गाने को छोड़कर इन्होंने सिमिलर सॉन्ग बनाया। वो स्टोरी आगे जाते हुए मैं दोनों गाने सुनाऊंगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। वी आर टॉकिंग अबाउट द 9th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेख टंडन, द ग्रेट फिल्म मेकर एंड ऑल्सो एन एक्टर। यस, ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी, एंड इन द सेकेंड आवर वी आर गोना रिमेंबर नन अदर देन आउट ऑफ द ड्यूओ शंकर जयकिशन इज शंकर सिंह राम सिंह राजवंशी, रघुवंशी। राजवंशी कहाँ से ले आया मैं ये सरनेम, शायद वो भी सूट कर लेता उनको। शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी 104th बर्थ एनिवर्सरी, वी विल प्ले गुड सॉन्ग्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to, I'll get the latest rate now, it's 125.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
4: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
5: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
4: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
5: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227-274. Book your table today.
6: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only, wherever they are. Be part of their celebration. Cake Box celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
7: Do you know you can open your NRE and NRO account from the comfort of your home by requesting us for a home visit? You can also visit any ICICI Bank UK branch or call us at 0344-412-4444. You will be transaction ready with immediate access to a debit card and a checkbook. Just reach out to ICICI Bank UK and they have a solution for your banking in the UK or in India. ICICI Bank UK.
8: ICICI Bank UK is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: NRI products and service are subjected to Reserve Bank of India and applicable laws in India. TNC's apply.
10: In times of loss, Om Funeral Care is here with compassion and support. On Kenton Road, West London, and in Ilford, East London, our experienced priests guide families through funeral rites in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208-922-3344. Available 24 hours a day. Om Funeral Care. Honoring your loved ones.
11: sunshine, skyscrapers and souks.
12: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
11: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
12: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
11: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
12: Southall Travel. At all protected.
13: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
14: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: डिड यू नो Kavita Krishnamurti has performed at London's Royal Albert Hall and New York's Lincoln Center, bringing her remarkable voice to international audiences.
17: Kavita Krishnamurti, celebrating Diwali, 1st November at Royal Albert Hall, London. Tickets at Box Office. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
18: Tune in to Navratri Hours on Laika Gold at 9 a.m. and Laika Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
19: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
20: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक है उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है ममता की छांव माँ से पाएं प्रेम के दीप हर घर जलाएं माँ स्कंद माता का आशीष मिले हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी
21: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है स्टार टूर्स ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
22: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: 04BT. Please call on 07466-997575.
1: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
2: Okay. Yeah, love you too.
3: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
4: दिल की बात हीरे के साथ डायमंड रिंग सिर्फ 500 पाउंड से शुरू मीनार ज्वेलर्स 181 अपर टूटिंग रोड कॉल 020-8767-7627 मीनार ज्वेलर्स द डायमंड स्पेशलिस्ट्स
5: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान
6: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स
7: राज कपूर जी ने एक गाना रोक दिया जो लेक टंडन के लिए शंकर जयकिशन जी रिकॉर्ड करने वाले थे फिल्म थी आम्रपाली और उसमें एक गाना जो था काटे ना कटे रहना विच देन राज कपूर जी को जब पता चला उन्होंने कहा कि ये तो मेरी म्यूज़िक बैंक का गाना है और शंकर जयकिशन को मना करता हूँ कि वो गाना ना दें तो फिर उन्होंने गाना रोक दिया और लेक टंडन जी पसीने से रेब जेब हो गए कि मेरा तो मुहूर्त हो रहा है फिल्म का और ये पहले गाने में ऐसा बैड लक तो लता जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम गाना वापस बनाएंगे अब जो गाना जो था काटे ना कटे रहना दैट वाज ऑब्वियसली संग बाय आशा भोसले एंड मन्ना डे जी इन मेरा नाम जोकर दैट वाज कंपोज्ड इन राग कॉल्ड सारंग या तो कहो गॉड सारंग अभी मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा लेकिन सारंग राग में था लेकिन लता जी ने इमीडिएटली शंकर जयकिशन के साथ बैठकर उन्होंने साथ में एक नई ट्यून बनाई और उस गाने को चेंज कर दिया एंड गाना पैदा हुआ जाओ रे जोगी तुम जाओ रे एंड वो राग था कमोड विद अ लिटिल टच ऑफ गॉड मल्हार एंड हमीर राग जो नहीं मधुबन मेरा अधिका नाचे रे हमीर राग वो उसका टच थोड़ा सा तो इन्होंने जयकिशन इन्होंने शंकर जयकिशन ने कहा शैलेंद्र जी को कि प्लीज़ आप गाना लिख के लाओ वो बड़ी मेहनत करके वापस आए घर जाके या जहाँ भी गए होंगे वापस आए और स्टूडियो में आकर कहा कि मैं 5 अंतरे नहीं लिख सका एज यूजुअल बट आई हैव डन ओनली 3 लता जी ने कहा चलेगा ये 3 भी चलेंगे और इन्होंने ये गाना तैयार करके रिकॉर्ड किया सो लेट्स हियर काटे ना कटे रहना पहले अ फ्यू लाइंस ऑफ इट एंड देन वी विल लिसन टू द सॉन्ग दैट वाज रिप्लेस्ड

जी हाँ, सबको मालूम है एल्विस प्रेस्ली का गाना. ऑब्वियसली रफी साहब को हैट्स ऑफ टू हिम फॉर हैविंग संग इट सो ब्यूटिफुली. लेकिन क्रेडिट तो ओरिजिनल जो होता है ओरिजिनल ही रहता है, उसको क्रेडिट तो जाता ही है. लेकिन वेल डन रफी साहब और ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन जिन्होंने संगीत दिया. लेकिन आगे जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि लेख टंडन के बारे में बात करूँ तो इनको 3 अवार्ड्स जो दिए गए थे. ही शेयर्ड द 1978 की फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर हिज मूवी दुल्हन वही जो पिया मन भाए. एंड ही शेयर्ड इट विद व्रजेंद्र गौर, वंडरफुल राइटर, एंड मधुसूदन कालेकर जो स्क्रीन प्ले बहुत बेहतरीन अदा से करते थे उनकी काफ़ी फिल्मों के लिए. एंड हिज बायोपिक आम्रपाली स्टारिंग वैजयंतीमाला एंड सुनील दत्त, इट वॉज इंडियाज सबमिशन टू द 39th अकेडमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फॉरिन लैंग्वेज फिल्म. लेकिन वो फिल्म कहीं नहीं पहुंची बिकॉज उस जमाने में इंडिया की फिल्म्स जो बॉलीवुड से जाती थी हिंदी फिल्मों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था. लेकिन बाद में थोड़ा सा हंगामा तो किया हम लोगों ने, लेकिन उस जमाने में बहुत अटेंशन नहीं मिलता था. ही रिसीव द बेस्ट डायरेक्टर्स अवार्ड फॉर हिज फिल्म अगर तुम ना होते स्टारिंग राजेश खन्ना इन फिल्म फेयर ऑफ कोर्स 1983 में. सो वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन लेख टंडन द ग्रेट मैन हु ऑल्सो एक्टेड इन फिल्म्स. डू यू नो ही एक्टेड इन सो मैनी ब्यूटिफुल फिल्म. स्वदेश 2004 की, उसमें वो दादाजी बने थे. एंड देन पहेली फिल्म ही वॉज द वाइज मैन. रंग दे बसंती, फिर हल्ला बोल एज लेख टंडन. एंड देन चार फुटिया छोकरे कैलाश बन के आए थे. चेन्नई एक्सप्रेस में ही वॉज बिशंबर मिठाई वाला. That's Rahul's grandfather. 2013 ki film. A great actor as well. Like a Goon. London ka number one Asian retro music station.

0: आई मीन जब भी वो हाई पिच मुकेश जी जब गाते हैं दुनिया, आई कुड हियर ऑल ऑफ यू सिंगिंग इट अलोंग एंड रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी आंख से आंसू भी निकल आते हैं बिकॉज दीज सॉन्ग्स इतने हमारे रग रग में बसे हुए हैं, गाने हैं। तो अगर शंकर जयकिशन में से किसी की भी एक एनिवर्सरी हो तो हम क्यों मिस करें। ऑफ कोर्स 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स 1957 से लेकर 1973 तक इन्होंने जो अवार्ड्स जीते, ऑब्वियसली जयकिशन जी 1971 तक उनके साथ थे, शंकर जयकिशन दोनों साथ में थे 71 तक, जब जयकिशन जी चल बसे उसके बाद ही कंटिन्यूड ऑन अंटिल हिज ओन डेथ। बट वी हैव टू रिमेंबर पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच। अभी शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी 15th of October 1922 हैदराबाद में जन्मे थे, एंड दैट्स व्हाई ही वाज फैमिलियर विद द साउथ इंडियन लैंग्वेज। और वो गाना जो था, एक रेस्टोरेंट में वो गए थे और वहाँ पे इन्होंने वेटर को कहा कि भैया जल्दी आ, क्योंकि वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने गुजारिश की तो कुछ ऐसी कुछ मीनिंग होता है रमैया वस्ता भैया, सो रमैया रामैया मतलब रामू जो अपने सर्वेंट का भी नाम होता है कभी कभी, तो वही सेड रमैया वस्ता भैया थोड़ा जल्दी कर दे या तो आ जा, ऐसा कुछ मीनिंग है। पर आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ क्या मीनिंग है क्योंकि अलग अलग वर्जन्स बहुत है, पर मीनिंग था कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे वेटर को खाना जल्दी लाने के लिए। सो उसमें से उन्होंने कहा कि ये बड़ा कैची है रमैया वस्ता भैया, सो उन्होंने गाना कंपोज कर दिया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट शंकर, जिनकी स्टाइल थी कंपोज करने की। अब इनका एक एग्रीमेंट था, दोनों कंपोज करते थे बट नोबडी न्यू कौन क्या कंपोज करता था, इट ऑलवेज यूज टू कम आउट एज शंकर जयकिशन्स म्यूजिक। लेकिन जैसे साल बीतते गए फिर द एक्सपर्ट्स गॉट इन टू द स्टाइल्स ऑफ द सॉन्ग। सो शंकर जी की जो स्टाइल थी कंपोज करने की, इट वॉज लाइक कैसे कहूँ, डांस नंबर्स, स्ट्रेट लाइन ट्यून्स, और जो भी फिल्में आती थी उसका टाइटल सॉन्ग जो निकलता था, जैसे कि चाहे कोई मुझे जंगली कहे तो जंगली का टाइटल, फिर दिल तेरा दीवाना है सनम तो दिल तेरा दीवाना का गाना आवारा हूँ, फिर जापान लव इन टोकियो तो टाइटल आ गया उसमें, और जब प्यार किसी से होता है, तो ऐसे ऐसे गाने, और इवनिंग इन पेरिस, वो सब गाने शंकर जी काफ़ी बेहतरीन अदा से कंपोज करते थे, एंड काफ़ी सोलफुल सॉन्ग्स हुआ करते थे, जैसे मेरा जूता है जापानी, एंड देन ये मेरा दीवानापन है, आवारा हूँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। और फिर जब जयकिशन जी चल बसे उसके बाद इन्होंने चल सन्यासी मंदिर में वो फिल्म में अवार्ड भी जीता, और ऑफ कोर्स हिज फेवरेट राग वाज भैरवी। अगर भैरवी में देखो तो दोनों का राग फेवरेट था, एंड फेवरेट राग ऑफ शंकर जयकिशन, दैट्स राइट। सो भैरवी में उन्होंने कैसे कैसे गाने किए थे, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, फिर भैरवी में दूसरा एक गाना था अनाड़ी का जो शिवरंजनी में हुआ था, ऐसे के तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, वो शिवरंजनी का था। और बरसात में हमसे मिले तुम, भैरवी ऑफ कोर्स। बट एक गाना जो था पीपल थॉट के भैरवी में था, विच वॉज आई मिलन की बेला के तुम और तुम्हें और क्या दूं मैं, दैट इज़ नॉट राग बेस्ड सॉन्ग, इट वॉज जस्ट ए कॉम्पोजिशन। एंड देन दोस्त दोस्त ना रहा और मेरे मन की गंगा श्री 420 के गाने, मतलब इनके सुनो छोटी सी गुड़िया की, यू नो, एंड देन दे यूज टू कंपोज सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स विद फास्ट टेम्पो, और टेम्पो फास्ट जा रहा है और गाना सैड है। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। अभी सैड सॉन्ग है लेकिन फास्ट बीट, टेम्पो फास्ट था। तेरा जाना दिल के अरमानों का, वो अनाड़ी फिल्म का। तो फास्ट टेम्पो एंड देन गाना सैड, और दूसरा एक सैड गाना है मेरे दिल कहीं और चल, वो दाग फिल्म का। तो उसमें फास्ट टेम्पो एंड देन सैड सॉन्ग। अंधे जहां के अंधे रास्ते, फिल्म पतीता का, वो भी फास्ट टेम्पो एंड सैड सॉन्ग। आई मीन कमाल है ऑनेस्टली। और कुछ गाने जो थे जैसे कि फिल्म आवारा में बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप फिल्म आवारा देखोगे तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक में ओ बसंती पवन पागल तारारा ता तारारा तारा, वो बैकग्राउंड में आता है। लेटर जिस देश में गंगा बहती है उसमें ये गाना बना, बैकग्राउंड म्यूजिक से निकाल के इन्होंने मेन डाल दिया। उसके पीछे राज कपूर जी थे, नो डाउट अबाउट दैट। एंड देन शंकर जी के गाने कुछ डिबेटेबल है, राधिके तूने बंसरी चुराई, तुम्हें याद करते करते पतली कमर है तिरछी नजर है फिर बरसात में, ऐसे ऐसे गाने लगता है कि इनकी कॉम्पोजिशंस थी। बट ऑफ कोर्स इनकी दोनों की स्टाइल्स देखकर, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्मों का जो करते थे वो जय किशन जी थे, और उनका एक स्पेशल गाना इन्होंने कंपोज जो किया था दैट वाज एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा। तो ही वाज द हारमोनियम एक्सपर्ट एंड शंकर वाज द तबला एक्सपर्ट। अभी तबला एक एक्सपर्ट के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो ही लर्न तबला फ्रॉम बाबा नसीर खां साहेब, एंड देन ही वॉज अ डिसाइपल लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम ख्वाजा खुर्शीद अनवर द ग्रेट कंपोजर। एंड 1945 में उम्र थी 23 साल की, एंड इन बॉम्बे ही स्टार्टेड हिज करियर विद गुरु कृष्णनाथ कुटी, एंड एक ग्रुप था अ थिएटर ग्रुप, एंड इट वॉज रन बाय सत्य नारायण एंड हेमावती, वो दोनों एक थिएटर ग्रुप थे, उनके साथ इन्होंने ज्वाइन कर लिया। एंड ही यूज टू प्ले तबला एंड ऑल बिफोर शिफ्टिंग टू पृथ्वी थिएटर, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग तबला एट पृथ्वी थिएटर एंड प्लेइंग माइनर रोल्स इन प्लेज। फिर वहाँ से ही लर्नड एंड मास्टर्ड टू प्ले सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सितार, एकॉर्डियन, पियानो। कितनी मेहनत है, है ना। ही ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट टू कंपोजर ड्यू हुस्नलाल भगतराम विद द एम्बिशन ऑफ बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर। फिर जय किशन डाया भाई पंचाल को मिले एट चंद्रवदन भट्ट ऑफिस। वो चंद्रवदन भट्ट उनको कहते थे मैं दिलाऊंगा आपको एक फिल्म दिलाऊंगा। तो ये दोनों वहाँ पे मिले एक दूसरे को और वहाँ से दोस्ती शुरू हो गई, और शंकर ने जय किशन को पृथ्वी थिएटर में डाल दिया एंड दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। उनको कहा जाता था राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इतना साथ उनका अच्छा रहा। सो उसके बाद इन्होंने फिल्म बरसात की, राज कपूर की, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। पर लेट्स से रफ़ी साहब ने कितने गाने गाए पता है, 341 सॉन्ग्स फॉर शंकर जय किशन, उसमें से 216 गाने तो सोलोस थे फॉर शंकर जय किशन। सो एस जे बोलो, शंकर जय किशन बोलो, तो उसका मतलब क्या हुआ, जंबो साइज्ड 60 पीस ऑर्केस्ट्रा। म्यूजिक असिस्टेंट्स दत्ताराम वाडकर, सेबास्टियन डिसूजा, दत्ताराम परकशंस एंड नोटेशंस और कंडक्टिंग करने के लिए सेबास्टियन डिसूजा, और लिरिसिस्ट्स दो थे शैलेंद्र एंड हसरत जयपुरी। यूजुअली शंकर यूज टू वर्क विद शैलेंद्र एंड जय किशन विद हसरत जयपुरी, बट नॉट ऑलवेज, वो क्रिस क्रॉस भी करते थे एंड टॉप सिंगर्स ऑफ कोर्स। फिर शंकर का कुछ टांका बीड़ा था शारदा जी से, तो फिर लता जी वॉज इन दी अदर कैंप विद जय किशन, वो अलग कहानी है। लेकिन हम गाने सुनते हैं आज ऑफ बेग योर पार्डन, आई गॉट अ फ्रॉग इन द थ्रोट, हियर वी गो विद सॉन्ग्स ऑफ शंकर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 125.45. 125.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
3: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा
3: कॉल प्रथम पटेल 07838302450
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting
5: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
6: क्रेविंग द टेस्ट ऑफ होम दिस फेस्टिव सीजन
7: एंजॉय करीज छोले भटूरे वड़ा पाव राज कचौड़ी मिठाई स्पेशल डिजर्ट्स एंड मोर एट हल्दीराम्स फर्स्ट लंदन रेस्टोरेंट
8: विजिट हल्दीराम्स इन लेस्टर स्क्वायर लंदन टुडे
9: हल्दीराम्स
10: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events.
4: Powered by India Vala Paneer, event managed by Jellyfish Events. Radio partner, Laika Radio Network. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: टिपिकल स्टाइल ऑफ शंकर जी, जब प्यार किसी से होता है, द टाइटल सॉन्ग, और आई शुड से सॉन्ग विद द टाइटल।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: Across London, this is Bally Brambat on Laika Gold.

0: London.
1: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
2: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Lohana Community North London on Sunday 18th October at Dhamecha Lohana Centre, South Harrow, HA2 8AX. Join us as we come together to celebrate this special festival.
5: Sponsored by Star Tours. Scotland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
6: A little sparkle, a lasting impression. Diamond tennis bracelets from £2,500.

0: This is a beautiful song and that is from film Kareeb. हमारे साइमन यूसुफ हमारे लिसनर ने पूछा कि आप जब किशोर दा बोलते हो तो डू यू मीन किशोर जी. वेल एक्चुअली बंगाली में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको दादा बोला जाता है, दादा. तो बंगाली में वो बोलेंगे कि किशोर दादा या हेमंत दादा या बप्पी दादा या कुमार सानू दादा. तो दादा का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है दा, हेंस किशोर दा, बप्पी दा, यू नो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन व्हेन आई से किशोर दा. सलील चौधरी, उनको भी दादा बोलते थे तो सलील दा बोलते थे. इट्स जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड हेंस फोर्थ.
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Feel Good Classics all day. This is Like a Gold.
0: Pyar hi pyar यहाँ छलक रहा है लाइका गोल्ड पे. आशा भोसले, रफी, रफी साहब.

0: थैंक यू बोथ ऑफ यू, शैलेंद्र सिंह, लता मंगेशकर. बस जाना तो पड़ेगा ही, बिकॉज अब सैंडी शाह आ रहे हैं ऑन ड्राइव टाइम एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पे राजपतन. I'll tell you in a second who the winner is of the competition.
1: Tasty Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: LYCA. This is Leica.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं। उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छाँव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
3: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: human specialists.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
3: Gold Drive with Sandy Shah. Oh
4: yeah. Hello, hello, hello. This is Kajal from The Breakfast Show. Take part in Bollywood Flashback. Get inspired by Morning Mantra and become a listener of the week. 6 a.m. to 10 a.m. The Gold Breakfast Show. Leica Gold, Leica Radio Midlands.

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Witness the beauty of Jordan, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
3: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
4: Craving the taste of home this festive season?
5: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
4: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today. Haldiram's.
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
7: सेंड मनी बैक होम टू इंडिया विद रेमिटली. मेक दिवाली शाइन ब्राइटर विद रेमिटली. क्विक, सेफ एंड अफोर्डेबल मनी ट्रांसफर्स. नो फीस ऑन ट्रांसफर्स ऑफ £500 और मोर फ्रॉम यूके टू इंडिया व्हेन सेंडिंग फॉर बैंक डिपॉजिट और यूपीआई अंटिल 31st December 2020. Exchange rate applies. Download the Remitly app.
8: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
9: This is Sandy Shah on Gold Drive.
10: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Full Drive with Sandy Shah.
1: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
2: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
3: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
2: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
3: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
2: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग back? What if your remortgage paid you?
3: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
2: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
3: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
2: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
4: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
6: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
7: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
5: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
9: टू बुक कॉल 0208 514 54. Book online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: धड़कन का बंधन तो धड़कन से है, कितने ही इश्यूज क्यों ना हो, जिन्होंने मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं, समहाउ वो ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई जरिया। फिलहाल आप हमें डीएबी पर सुन पा रहे हैं, सुनिए और मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाइए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। यानी सनासर वेरी मच हाजिर, क्या ही खूबसूरत पसंद। डेफिनेटली मेरे किसी सुनने वाले ने ही रिक्वेस्ट किया था ये गीत, जरा सी बात पे नमदीदा हुआ करते थे, जरा सी बात पे आंख भर आती थी, जरा सी बात पे नम दीदा हुआ करते थे, हम भी क्या सादा ओ पेचीदा हुआ करते थे। अब हमें देख के लगता तो नहीं है लेकिन हम कभी उसके पसंदीदा हुआ करते थे।
1: This is Anisa Nasir on Like a Gold, Greater London. With competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: बिल्कुल, अगर आप भिजवाना चाहते हैं पैसे तो मैं आपको बता दूं, £1 in British sterling today can get you up to right, yes, can get you up to 125.4 Indian rupees. और भूलिएगा नहीं, एक्सचेंज कीजिएगा इन ब्रांच ऑनलाइन या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Excuse the voice note, lads. Just got to a job. Drill's gone walkabout. Anyone got a spare?
3: Not again. Second time this month, innit? Yeah, I got a spare.
2: Oh, legend. I'll have it back to you tomorrow.
3: It's all right. Next round of bacon rolls are on you, though.
4: We're here to keep your business connected with the people that matter most. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile for Business. Sign up now and get up to £50 credit as a welcome bonus. Offer ends 1st of November. For terms, visit tescomobile.com/business.
1: Anisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. Like
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
8: बात क्या है बंटू?
9: अरे बोलो काक भसुंडी।
10: मेरठ की कियोटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
11: अरे विनी, क्या हुआ? क्या हुआ?
12: तो
10: और लाइफ बन गई हेवन।
12: भाभी डायन है।
10: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
13: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
14: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
13: आप सिर्फ मजे लो।
15: Sunshine, skyscrapers and souks.
14: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
15: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
14: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
15: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
14: Southall Travel. At all price.
16: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
17: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
16: ये तो बताओ, कोई पता चला?
17: गुरु गुरु,
18: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
16: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
18: शीघ्र
16: शीघ्र।
18: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
19: टू बुक कॉल 0208 514 54 Book online at Eventbrite.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: दिल की बात हीरे के साथ, डायमंड रिंग सिर्फ £500 से शुरू। मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड। कॉल 020-8767-7627. मीनार ज्वेलर्स, द डायमंड स्पेशलिस्ट्स।
4: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
1: Leica Gold.
20: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: सुहाना सफर फिल्म का नाम और बहुत ही सुहाना गीत 1970 की फिल्म शर्मिला टैगोर जी और शशि कपूर जी। आर्टिस्ट ऑफ द वीक है हमारी शर्मिला जी, इसलिए उन्हें पर पिक्चर आए, इसी प्यारे से गीत हमने आपको सुनवाया। बेहद शुक्रिया पूरन कपूर जी, हाजिरी आज भी लगी, पूरे वीक की लगी, बल्कि अगले वीक की लगी, लेकिन आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। नदीम अज़र बाजवा जी वी आर बैक ऑन एयर, आ जाइए। वजाहत जी बेहद शुक्रिया। अवतार आसी जी ऑल इज कूल नाउ। बेप्सी राय जी वेरी वेरी वेरी वेरी लवली इवनिंग। प्रतिभा जी किदां किवें किंजु।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और ये गीत सिर्फ गीत नहीं है, कमल शिवनानी जी की पसंद है। फिल्म का नाम कांच और हीरा। आवाज वन एंड ओनली जनाब मोहम्मद रफी साहब की।

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: कहना पड़ता है भाई, कहना पड़ता है कमल जी, क्या फरमाइश है। एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, एक भी जख्म को आराम नहीं आने दिया। उसने एक दिन मुझे नाकाम कहा और मैंने खुद को अपने भी किसी काम नहीं आने दिया। एजाज साहब, आई वॉज वेरी मच हियर। और ये जो नदीम अज़र बाजवा जी, आप कंडीशंस लगा रहे हैं ना, कहते हैं कि मिडनाइट तक यहीं बैठिए, आप कवर कीजिए उन आवाज़ को जब हम सुन नहीं पाए आपको। अरे आप सुन नहीं पाए, मैं तो सुना रही थी।
0: ये है लाइका गोल्ड।
2: जी हाँ बिल्कुल, लाइका गोल्ड अनीसा नासिर वेरी मच हाजिर। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कल फिर गायब होने वाली हूँ। कल राजवीर होंगे आपके होस्ट, क्योंकि पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली जी परफॉर्म कर रहे हैं लाइव, यानी कि कल फ्राइडे 16 अक्टूबर एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ में, और संडे वो जो है परफॉर्म करेंगे 18 अक्टूबर एट ICC बर्मिंगम। तो कल वाला शो मैं और रॉकी खान होस्ट कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर ड्यूटी ना करके कहीं और ड्यूटी कर रहे होंगे। राजवीर जी एडवांस में आपका शुक्रिया।
3: हेलो देयर, माय नेम इज दीप राजा एंड आई डू द वीकेंड ब्रेकफास्ट शो फ्रॉम 7 AM सैटरडेज एंड संडेज, लाइक अ गोल्ड इन लंदन, द मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर।
0: This is Anisa Nasir with The Big Show.
4: Love with Santorini, Venice, Lake Como, Interlaken, Norway and Austria with TravelHubWorld.com.
5: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
6: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
6: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
6: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
8: Search is changing.
9: Customers aren't just using Google anymore.
8: They're asking AI.
9: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
8: One business, one recommendation.
9: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
8: Will your business be the answer?
9: Or the one that got left behind?
8: The future of search has already started.
9: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
8: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
12: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
13: Tune in to Navratri Hours on Lyca Gold at 9 AM and Lyca Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
0: Lyca Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: हम सर पे लिए फिरते हैं नुकसान किसी का, हम सर पे लिए फिरते हैं नुकसान किसी का, गठरी में हमारी है ये सामान किसी का। दिखते नहीं क्या तुमको मेरी आंख में आंसू, दिखते नहीं क्या तुमको मेरी आंख में आंसू, एहसास ही कर लेता है इंसान किसी का। तू खुद ही बता दे कि बस एक तेरे अलावा कब नाम लिया हमने मेरी जान किसी का। गो अक्ल ये कहती थी नहीं होगा मयसर, गो अक्ल ये कहती थी नहीं होगा मयसर, करता रहा अरमां दिले नादान किसी का। हम सर पे लिए फिरते हैं नुकसान किसी का, गठड़ी में हमारी है ये सामान किसी का। लीजिए दोस्तों, बेहद शुक्रिया आप सबके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। शकीला नेडा जी, आपका भी खैर मकदम है प्रोग्राम में, और रानी जी सलाव में सुन रही हैं, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। न्यू मॉल्डन में हमारी उज्मा जी सुन रही हैं, और अकेली नहीं सुन रही, सच्ची में पाकिस्तान से आई हुई मेहमान के साथ सुन रही हैं, अम्मारा जी। अम्मारा जी वेलकम टू UK, वेलकम टू लंदन, वेलकम टू द बिग शो। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में, जो यूं समझ लें कि बस दोस्तों की एक महफिल सजाई होती है हमने, और हम दिल के छाले फोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, दुखी बातें भी करते हैं, सुखी बातें भी करते हैं। इसके अलावा शायरी क्या है, दुखी सुखी बातें ही और क्या है। आई होप कि आप जब तक यहाँ रहेंगी, ज़बरदस्ती उस्मान जी आपको कोशिश करके सुनवाती रहेंगी हमारी नशरियात। सो एक दफ़ा फिर से दिल के गहराइयों से वेलकम।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 125.8 Indian rupees, 86.2 Afghan Afghani, 367.4 Pakistani rupees, 163.2 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £101 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: वैसे कमाल नहीं है एजाज साहब, अभी पिछले साल ही तो मैंने मसरत जी को हैप्पी बर्थडे कहा था, उनको इतनी सारी दुआएं दी थी, बेस्ट विशेस दी थी, अब फिर उनकी सालगिरह आ गई है। अच्छा, हर साल आती है, मेरी वैसे साल में दो बार आती है। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। बेहद शुक्रिया अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मसरत जी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। और अगला गीत मुजीब आलम जी की आवाज़ में है, बहुत ही प्यारा, और आई थिंक ये बड़ा सूट करेगा आज आपकी सालगिरह के मौके पर, तो आपके नाम करते हैं।
2: ये है
3: Leica Gold,
1: London's biggest classics all day. Leica Gold
3: from Lollywood with love with Anissa.

0: खुदा कभी ना करे गम से हम किनार तो हूँ, तेरे रस्तों को आसान करता रहूँ, तेरे जीने का सामान करता रहूँ, तेरा दामन सितारों से भरता रहूँ। मेरी खुशियों से महके है तेरा चमन, रास आ जाए दुनिया की रंगीनियाँ, तुझको मालूम ही ना हो महरूमियाँ, तेरे रंगों से कौसे कज़ा भी बने, तेरे रंगों से रंगे वफा भी बने, तू सबा भी बने, तू दुआ भी बने, तू मसीहा बने, तू शफा भी बने, मेरी सारी दुआएं हैं तेरे लिए, तुझको मेरी दुआओं से बढ़कर मिले। आप भी अगर आज की खुशी मना रहे हैं तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के नाम। लीजिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है, और बशर्ते ज़िंदगी अब आपकी और मेरी अगली मुलाकात जो है वो मंडे होगी। कल आई एम बिजी समवेयर होस्टिंग द शो, लखविंदर वडाली जी, वैसे सोल्ड आउट शो है, लेकिन आना चाहें स्लाव में, क्रिस्टल ग्रैंड में, तो ज़रूर पता कीजिएगा, शायद कोई एक आध सीट हो अभी बाकी। आई वुड लव टू सी यू देयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, सुनवाते रहिएगा। मेरे जाने के बाद लाइका गोल्ड की जो चुनी हुई गोल्ड नाइट्स का म्यूजिक है वो मिस करने का हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। और ब्रेकफास्ट शो लेकर यहाँ ग्रेटर लंदन में हाजिर रहेंगी काजल जी एज ऑलवेज। आज थोड़ा सा इशू रहा, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। डीएबी पर आप फिर भी हमें लाउड एंड क्लियर सुन रहे थे, लेकिन ऑनलाइन सहूलत जो है वो आज मैसर नहीं रही। तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। एक दफ़ा फिर से हमारा जी आपका खैर मकदम, और मसरत जी आपको सालगिरह मुबारक। अगर आप भी मना रहे हैं कुछ तो आपको भी, और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। जाऊँ इजाज़त, दो आखिरी गीत मिस नहीं करने, बहुत अच्छे गीत हैं। शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: दिस इज अ निशन मैसेज विद द बिग शो।
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only, wherever they are. Be part of their celebration. Cake Box celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
5: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो?
8: Catch Dil Chahta Hai on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase Cinema.
9: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी है, तुम्हें क्या लगता है?
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFF UK.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah, love you too.
12: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
13: Download
12: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Like a Gold.
13: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.

0: Like our gold.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
6: नो नीड टू फ्लाई बैक होम This summer holiday, come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Europe or UK ke sapne देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
9: Celebrate with Haldiram's.
10: Punjabi chole, rajma rasila, yummy dal makhni, aloo matar, sarson da saag and more.
9: Festive favorites ready to eat. Shop at haldiramuk.com or at your nearest grocery store.
11: Haldiram's.
12: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Laika Gold par.

0: शुरुआत की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
1: हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना